हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो।